0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro London के Retro Asian Mix को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिएगा, हमारे सिस्टर स्टेशन Sunrise Hits को भी आप सुन सकते हैं. The UK's smoothest Asian hits nationwide on DAB, on the free Sunrise Radio app और online sunriseradio.com पर.
2: ये है Sunrise Retro.

आकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर पीकर।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: This is Ajay Nagar. Don't forget to join me on our sister station, Sunrise Radio, weekends from 10 a.m. on 963 972 a.m. in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on your home smart speakers, and on the Sunrise Radio app.
1: ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, हा हा हा हा हा, डर गया ना।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

अंदर चैन आराम, राती सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: Visit our stores at Tooting, Kingsbury, East Ham, Cardiff, Leicester, Northwood, or brand new stores at Crawley and Hounslow. Or visit us at poojasweets.com. Pooja Sweets and Savories. Har utsav ko nikhare, har bandhan ko savare.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
3: Thank you for tuning in to Sunrise Retro, London's retro Asian mix. Don't forget to listen to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, and for the Nation Player and Radio Player app.
4: London's retro Asian mix. Sunrise Retro.

0: Sunrise Retro.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Billamoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Billamoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Thank you for tuning into Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to tune into our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app, or for your home smart speakers, and on the Radio Player and Nation Player app.
5: Ye hai Sunrise Retro.

0: ये है सनराइज रेट्रो।
1: मिले दिल मिले तब गुल खिले, खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

0: तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
2: ये है सनराइज रेट्रो।

0: This is Sunrise Retro.
1: ये है Sunrise Retro.
2: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है.

सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर। सनराइज रेट्रो, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स।